एक अखर दा निखेड़ा करना है। कई गुरसिख इत्थे अपमान पड़ जांदे ने, लेकिन है इत्थे

शास्त्र में विचार हो रही है। सिख दा ऐसा प्यार हो गए गुरु दे नाल, हिरदे चों आ मंग निकले। कथा तो तुसी अगे भी सुनी, दास फिर सुनाउंदा कई शरीर नवे बैठे होंगे तरन तारन दा। दास दा कोई मित्र उन्हें दास नूं सवाल कीता कि तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी एहो जी तस्वीर वेखी कोई जिदे विच तीन चार सिख मगर होण? मैं कहा हां देखी ते है, गुरुद्वारा बदेकसर भी लगी हुंदी, होर कई जगह भी देखदे हां कि गुरु साहिब खड़े ने, बिधी चंद मगर है, बाबा बुढ़ा जी मगर ने, होर भी दो तीन सिख मगर ने। वो तरन तारण का दास का मित्र आखन लगा, कहन लगा गुरु साहब की तस्वीर के मगर जेड़े बाबा बुढ़ा जी ते बिधी चंद तो अलावा दो तीन सिख नजर आउंदे ने। कहन लगा उन्हां चों एक सिख है जेड़ा जोधका जात दे नाल संबंध रखदा है। दास ने कहा तेरी गल सुनाउण दा की मकसद? आखण लगा असी उस सिख दी कुल विचों चले आ रहे हां, ओ जोधका जात दे सिख दी कुल विचों। मैं कहा भागा वाला भई ओ सिख जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहिब दुनिया दे मालक दी सेवा कीती होवे ते ओदी कुल चों चलदा आ भागा वाला। गरीब नवाज ने कहा तन तन सो कुल, माता नूं भी धन कहा, पिता नूं भी धन, ओ कुल नूं भी धन कहा। मैं कहा भी वड्डे भागा वाला उस कुल चों चलदा आ रहे हैं। उन्हें फिर दास नूं एक वचन सुनाया, आखण लगा ओ जोधका जात दा सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वेले जिदी कुल चों असीं चले आ रहे हैं। कहण लगा एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों प्रसन्न हो गए, एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों बहुत प्रसन्न होए। एक रस दी सेवा सी, सेवा दे पिछे निष्काम भावना।

क्योंकि मेरी विचार चल रही है मांगना मांगण निका हर जस गुरते मांग किसले ताड़ा भी अरदास मन जुड़े बाणी च मन जुड़े आ वाहगुरु के सिमरन च मन जुड़े किसे वेले वैसे मालक टुट पवे ते फिर पता होवे मंगना की है। यह दास नूं गल सुना रहे हैं कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहब वो दुनिया के मालक सारी सृष्टि के मालक बंदी छोड़ दिता दो जहान दे वाली मेरी ते तीरी दे मालक शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब प्रसन्न हो गए कहने लगे सिखा मंग की मंगना सत्संग करनी वालियां कोलों सोझी लिया जिन्हां नूं रब ने इतनी सोझी बख्शी ओए उन्हां दी सोझी क्यों किनका पर सोझी साडी झोली च वी पै जाए। गुरु साहब प्रसन्न होए कहण लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्न मंग की मंगना। गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले दी कथा एक माई ते भी महाराज प्रसन्न होए सी एक माई ते भी प्रसन्न होए सी आखण लगे माई मंग की मंगनी है ते माई ने भी आख्या सी दाता जे प्रसन्न होया ते इक्को चीज मंगनी है खुला वेड़ा होवे ते नूं मेरी ना सोने दी मधाणी ना लस्सी रिड़कदी होवे ते वेड़े च पोतरा खेड़दा होवे होर कुछ नहीं मंगदी। ते गुरु साहब आखण लगे माई बड़ी चुस्त निकली है नाले कहनी वा इक्को चीज मंगनी आ भी खुला वेड़ा होवे पोतरा खेड़दा होवे सोने दी मधाणी नाल नूं रस्सी रिड़कदी होवे। महाराज कहण लगे नाले कहनी है इक्को चीज चाहीदी है हुण खुला वेड़ा दे तां ही होएगा जे तेरे कोल माया होएगी खुला मकान होएगा ते सोने दी मधाणी दे तां ही होएगी के बेशुमार तेरे कोल माया होएगी माया भी मंग ली खुला वेड़े का मतलब मकान भी मंग लिया ते नूं भी मंग ली इहदा मतलब पुत्र भी तेनू लोड़ है पुत्र भी मंग लिया ते अगों पोतरा भी मंग लिया कि अगां भी चलती रहे कुल ते भी आखनी है लस्सी रिड़कती होवे भी दुध की कमी भी ना होवे घर च पर ए ते दुनियावी नहीं वो ते करदा है बख्शीशा साचे साहबा क्या ना ही घर तेरे वो तो दुनियावी चीजां दियां भी बख्शिशां करदा है कोई खाली थोड़ी रहन दिंदा है भाव कहण दा ए ते माई ने दुनियावी चीज मंगी पर वो सिख दी सोझी चो किनका पर सोझी साडी झोली गुरु साहब कहण लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्ना मंग की मंगना सात संगत ओदी मंग निराली की मंगया हे सच्चे पातशाह ये मेरे ते प्रसन्न होए हो कृपा करो जे मेरे ते टुटे हो ते कृपा करो की मंगना जल्दी मंग कहण लगा जे टुटे हो ते आ कृपा करो कि जिथों तक मेरी कुल चले आ गुरु घर दा वासा साडी कुल चो ना निकले। गौर नाल सोचो कितनी लंबी ते वड्डी ते अनमोल दात मंग ली लोड़ है सोजी दी ए रावण ने भी तो भगती की है कोई माड़ा काम तो नहीं किया सिख गुरु हरगोबिंद साहब वेले उन्हें सेवा की गुरु नूं प्रसन्न कर लिया रावण ने भी भगती की सी परमात्मा नूं प्रसन्न कर लिया पर जंदे जो तो परमात्मा टुटा रावण नूं पुछया रावण नूं मंग की मंगना ते की मंगया सी कहण लगा मैनू मौत जेड़ी ना वो आवे ही ना आ की मंग हुई इस मंग च हंकार है हरनाकश ने भी भगती की गौर करो हरनाकश ने कोई माड़ा काम थोड़ी किया भगती की इनी भगती फिर परमेश्वर प्रसन्न हो गया हरनाकश मंग की मंगना पर सात संगत मंगण की जाच ना आई की मंगया कहंदा जी ना दिने मरा ना राती मरा ना अंदर मरा ना बार मरा ना सवेरे मरा ना शामी मरा ना जमीन ते मरा ना समान ते मरा ना पशु पंछी परिंदे कोलो मरा ना मनुख कोलो मरा आ मंग लिया। ए मंग च की है हंकार है मैनू मौत ना आवे मंगण दी जाच सिख लईए। गुरु अर्जन देव जी वेले भी एक नाथ होया सत्संग तो नाथ ने भी शिव जी की आराधना की सी उस नाथ ने शिवजी की आराधना की शिवजी प्रसन्न होके दर्शन दिते नाथ तेरी भगत

राग मल्हार बारे गुरु अमरदास जी का वचन है, मल्हार शीतल राग है, हर त्याया सांत होए। फिर ये भी हुक्म है, गुरमुख मल्हार राग जो कर है तीन तन मन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मल्हार दा प्रभाव है सारे पासे, उत्साह दा वातावरण हो जाना। मल्हार राग विच बाणी दा मीह पैंदा दिसेगा, अते जिसने भी घुट अमृत बूंद पी लई ओ निहाल हो गया। साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। अमृत बचन है, इस बाणी विच बहुते शब्द मीह अते बबीहे दे संबंधां नूं ही दर्शाउंदे हन। यह भारतीय संगीत दा बड़ा प्रसिद्ध राग है, ना केवल संगीतकारां विच सगो जन साधारण लोकां विच बहुत प्रिय है। मल्हार एक मौसमी राग है, भारत दी भूगोलिक स्थिति अनुसार इस राग दा गायन सावन भादरों दे महीनियां विच वधेरे कीता जांदा है। बरखा रुत विच यह हर समय गाया जा सकदा है, उंज यह रात दे तीजे पहर गाया जांदा है। इस राग विच दोनों निषाद लगदे हन अते बाकी सारे स्वर शुद्ध। इसका वादी मध्यम अते समाधी षड्ज है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल पासों ये शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या अते दूजे शब्द का मनोहर कीर्तन राग मल्हार विच ही कर रहे हन भाई नरेंद्र सिंह जी। पवित्र शब्द है राम राम बोल बोल खोजते वड भागी। पहला शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कहे मन लाजुम रसा, अवरा पे कहे मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु भी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु नानक देव जीओ महाराज नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिन मंत्र सुनाया पवजन विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया ज्यों बुलावे तुम बोलहे स्वामी ज्यों बुलावे तुम बोलहे स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक।

जो प्रभु की अति प्यारी। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। गुरु नानक पद पंकज वंदन।

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कर।

संत सरन जो जर पर सो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा। सतगुरु युगो युग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तप स्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजियां लगवाउन दे लई, सतसंगत हरि जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दिया अमोल कड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनिया बना रहे हो, सचमुच इन्हां कड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रही हैं। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर, यहां दे 300 साल दिहाड़े संगतां मना रही हैं। एक कितने दिहाड़े इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत, इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हैं, परंतु साध संगत उस दी कुदरते कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज दे नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन किया, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। गज बज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो,

0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेक तरह के दुखां सुखां विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उनां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उनां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हैं किसी जंगल के रास्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे नाल ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती ते नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हां नूं लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई

कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्मज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगों वास्ते। भावे संसारक तौर ते महापुरुषों के जीवन नूं कोई सास उसका कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने साध संगत जिन्हां दे नां तों सारे लोग जानदे हन, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान साध संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह साध संगत संत बाबा नंद सिंह तो उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत ते सुनांदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे उह डेरे दे विच होके जांदे मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना किया कि भाई गुरमुख सिंह अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असीं जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना किया भाई गुरमुख सिंह जी साडे कोल टाइम तां नहीं है, परंतु असीं चाहुंदे हां कि असीं बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असीं नमस्कार कर लईए, एक बारी गुरु साहिब नूं मत्था टेक लईए। संत गुरमुख सिंह जी हथ जोड़ के कहिंदे ने जिवें आप जी की मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरुषां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असीं लोग मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुतिआं ने तां मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जिहा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्चीस मिनट निकल गए, बोलो इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लंबी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी। ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहिंदे असीं सोचदे हां भई पच्ची मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहिंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए, बोलो सतनाम। टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहिंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह ही 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया, बोलो सतनाम। संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने पूछो की पूछना चाहुंदे हो। महाराज नाले दा तुसीं कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन दा भी टाइम नहीं, बैठन दा टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे साडे कोल टाइम नहीं है, बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभाव साधु सुभाव सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता दिंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी दे जीवन नूं ए सी गुरमुख दी कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसदे ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसदे कन्न भर दित्ते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घर वाली तेरी कदे ख्याल रखिया? उह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत उह गुस्से दे विच आ के कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मंनदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: अकाल। जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण? किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह। बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारां ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी, साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गई, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव, जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचदे हन की करिए? बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालके नूं अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालके नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां भाई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों भाई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ए फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशां ने कहना कीता भाई गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है। मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो, ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज, तिने त्याग दतियां। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौन ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास गलेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संगत उफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। साध संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म।
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना नहीं।

विसारिए मन क्यों विसारिए ए वड्डाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु माता दे उदर विच प्रतिपालना करदा है बच्चे दे। फिर जदों जन्म हुंदा है तां फिर दुध दी दात देंदा है। तेरे लिए किदियां उसने बरकतां छोड़ियां हन संसार विच कि माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विशारी है मनो क्यों विशारी है ए वडदाता जो अग्नि में आहार पहुंचावे। माता दे पेट विच जठर अग्नि जिथे तेरी प्रतिपालना अकाल पुरख वाहिगुरु करदा रहा क्या हुन न करेगा। इसलिए ए प्राणी ए जीव तू डोलना छड दे तू पटकना छड दे मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। एक ईश्वर एक अकाल पुरख वाहिगुरु सारिया नु दे रहा है क्या तेनू ना देवेगा। इसलिए भाई तेरा फर्ज है जितने श्वास वाहिगुरु ने तेनू बख्श दिया ना तू जप जप के उन्हां नू सफल कर ले। कुदरत कीम ना जानिया वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में शाह। जितने तक तेरे श्वास चल रहे हन तू उसका शुकराना कर तू समर्थ।

गुरु नानक दे रूप च पहली विशेषता ही फिर गया ही नहीं दसा जामिया तो बाद शब्द रूप विच धरती ते टिक गया दुनिया नू तारन दे बकायदा उसे तरह जोत टिकाई है और किसी भी ग्रंथ नू गुरु

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं।

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।